0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खलील साहब, आज आपको एक नई बात सुनाऊं?
1: जी जरूर बताएं।
0: आपको सुन के हैरत होगी और मुझे भी पहले पहल बहुत हैरत होती थी कि जापान में लोग गर्मियों में झींगरों की आवाज से लुत्फंदोज होते हैं।
1: कौन सा झींगर? वही जो हमारे यहाँ रात को घरों के अंदर शोर करता है, किताबों और कपड़ों को चाट जाता है, वही?
0: किताबों का दुश्मन बरे वह भी झींगर की एक किस्म है, लेकिन आज बुनियादी तौर पर हम जिसका जिक्र करेंगे उसे अंग्रेजी में सिकाडा और जापानी में सेमी कहते हैं। सेमी या जैमी, ये जो दरख्तों पे बैठता है, दरख्तों में घूमता फिरता है, अमूमन सुबह या फिर दोपहर के वक्त शोर मचाता है, चहचहाता है।
1: अच्छा, वो काला और शफाफ परों वाला सिकाडा?
2: जी वही, जापान का झींगर। असल में जापानी लोग मौसमों के एहसास से न सिर्फ लुत्फंदोज होते हैं बल्कि उनकी कदर भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल तुरस्का खदीजा। और जापानी लोगों का ख्याल है कि झींगर की आवाज़ सुनने से उन्हें बदलते मौसमों का एहसास होता है।
2: हाँ, गर्मी आने का एहसास, और जब झींगरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और अमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा, तो जो झींगर है वो गर्मी की आमद का नकारा है क्या?
2: जी बिल्कुल, झींगरों ने नकारा बजा दिया है खलील साहब। और कहा जाता है कि जापान में कमोबेश 32 अकसाम के झींगर पाए जाते हैं।
1: अच्छा चलें, तो आज आप उनका नाम ले लें, इस बहाने आपका इम्तिहान भी हो जाएगा।
2: अरे झींगर नामा वसीमा ने शुरू किया था भाई, वही सुनाएंगी हमें।
0: हाँ जी हाँ जी, खलील साहब आपने झींगर की इकसाम में दिलचस्पी ली, इसका बहुत शुक्रिया। और अभी खदीजा साहबा ने बताया कि जापान में कमोबेश कहा जाता है कि 32 इकसाम के झींगर हैं। इन 32 इकसाम में से मैंने सिर्फ 6 के नाम बताने हैं, सारे नहीं बताने, क्योंकि कुल इकसाम का 96% हिस्सा उन

0: Higurashi Zemi Jingle सुकुबोशी जेमी जिंगर्स, खदीजा सही बोला मैंने?
1: हाँ मेरे ख्याल में.
0: और कुमा जेमी जिंगर और फिर मिनमिन जेमी जिंगर.
1: मिनमिन ही है ना?
0: मिनमिन मिनमिन
2: मिनमिन. चलें, इसी बहाने आपकी याददाश्त का इम्तिहान हो गया.
1: अच्छा वसीमा, ये जो अभी आपने मिनमिन जेमी जिंगर कहा, इसकी आवाज बहुत ज्यादा आने का मतलब होता है कि असल गर्मियां शुरू हो गई और उमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू होती है. और अब हम मिन मिन जेमी जिंगर की आवाज सुनेंगे.
2: हाँ, जब तक बारिशों का मौसम था तब इतनी गर्मी नहीं थी. अब जुलाई का तीसरा हफ्ता जब से शुरू हुआ है तो गर्मी उरूज पर है.
1: जी, और जो सुकुबोशी जेमी जिंगर है उसकी आवाज का मतलब समझा जाता है कि अब खिजा आने वाली है, यानी मौसम तब्दील होने वाला है.
0: अच्छा सामिन, सुकुसुकुबोशी जेमी जिंगर जो है जापान भर में अमूमन पाया जाता है सिवाय ओकिनावा के. ये शहरी इलाकों से लेकर नशेबी पहाड़ी इलाकों तक में आबाद है और दुनिया भर में अपनी बड़ी पेचीदा सी मौसीकी वाली चहचहाहट के लिए जाना जाता है. और अक्सर दिन के वक्त चहचहाता है, वो नहीं है जो जिंगर रात को तंग करता है, किताबें खाता है, वो नहीं है. अच्छा, ये कई अकसाम के जंगलात में पाया जा सकता है, बागात में पाया जा सकता है और चेरी और पर्सिमन यानी जापानी फल के दरख्त पर भी ये आ जाता है. तो आइए इसकी भी आवाज़ सुने. अरे प्यारी सुहानी आवाज़ थी. वैसे खदीजा, बरेसगीर के जिंगरों की आवाज़ से कितनी मुख्तलिफ आवाज़ है. हमारे यहाँ तो जिंगर ज़्यादातर ये दो किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, और दूसरी है ना.
1: उसी पर लगता है जापानी जेमी जिंगर की आवाज़ का तर्जुमा कर दिया आपने. अच्छा वैसे वसीमा, आपकी परफॉर्मेंस हमने सुन ली. खली साहब, आप भी अब जापान में मुकीम हैं, तो हमें अब ये सुनाइए कि यहाँ क्या कुछ देखा और कैसा पाया सब कुछ.
2: मैंने आपकी जिंगर कहानी तो सुन ली, अब जो दास्तान मैं सुना रहा हूँ उसका उन्वान है जापान जो मैंने देखा.
0: अरे वाह, इस सिलसिले में आज हम क्या सुन रहे हैं?
2: ये किस्सा है बिजली और पानी के कनेक्शन का.
1: यानी कि घर लेने वाला आपका मिशन मुकम्मल हो गया और अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मिशन दरपेश है आपको.
2: जी बिल्कुल, टोक्यो में आखिरकार किराए का एक छोटा सा मकान ही मिल ही गया है. दिल ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे प्रॉपर्टी एजेंट ने एक ऐसा जुमला कहा कि सांस वहीं अटक गई.
0: वो सुख वाली.
2: बिजली और पानी के कनेक्शन उसने कहा कि आपने खुद लगवाने हैं. अब सच पूछे तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई. वजह यह नहीं थी कि कनेक्शन लगवाने थे, वजह यह थी कि चंद महीने पहले पाकिस्तान में बिजली का कनेक्शन लेने का तजुर्बा अभी तक हाफजे पर ऐसे सब था जैसे किसी सरकारी दफ्तर के रजिस्टर पर लगी मोहर.
0: अब एक और मोहर दरपेश आ गया.
2: बंदा एक खिड़की से दूसरी खिड़की, फिर तीसरे कमरे, और फिर जवाब मिलता साहब अभी मीटिंग में है, और आखिर में किसी न किसी फाइल को पहिए लगाने की गैर एलानिया मगर मारूफ रिवायत.
1: जिस रिवायत का बेड़ा गरक हो.
2: अब सो मैं दफ्तर में बैठा यही हिसाब लगा रहा था कि जापानी जबान भी अभी पूरी तरह नहीं आती, यहाँ किस किस दफ्तर के चक्कर लगाऊंगा, किस से दरखास्त करूंगा और किसको अपनी बेबसी समझाऊंगा.
1: समझ गए. हाँ जी, वैसे इस जगह आपको कोई उदास सा गाना गाना
2: था. मैं सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऑफिस में था ना. इतने में कोलीग ने पूछ लिया कि खैरियत है. मैंने कहा किराए का घर तो मिल गया है, अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मसला है. वो मुस्कुराई और कहने लगी इसमें मसला क्या है.
0: हाय, मुस्कुराहट कैसी थी भला वो मुस्कुराहट.
2: मैं अब करके नहीं दिखा सकता. अच्छा, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जापान में बिजली, गैस और पानी जैसी सहूलतें मुख्तलिफ कंपनियां फराहम करती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियां मोबाइल कनेक्शन देती हैं. जिस कंपनी की सर्विस पसंद आए उसी से कनेक्शन ले लीजिए.
0: अरे वाह.
2: फिर उन्होंने दो कंपनियों के नाम मुझे बताए और उनके नीख और सहूलतें समझाई और बोली मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ. तो मैंने कहा चलिए फिर मैं भी यही ले लेता हूँ.
0: अब ताबेदार.
2: बस और कोई चारा नहीं था. तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, कंपनी की वेबसाइट खोली, मेरा नाम, पता और फ़ोन नंबर दर्ज किया, फिर पूछा किस तारीख और किस वक्त से कनेक्शन चाहिए. मैंने तारीख और वक्त बताया. उन्होंने स्क्रीन पर आखिरी बटन

0: दबाया फोन मेरी तरफ बढ़ाया और बड़े इत्मीनान से बोली, हो गया।
1: हो गया, बात है।
0: मुझे यकीन नहीं आया। मैंने दिल में कहा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रही हैं या फिर असल इम्तिहान अब शुरू होगा, लेकिन इम्तिहान तो ख़त्म हो चुका था। जब मैं नए घर में दाखिल हुआ तो बिजली भी मौजूद, पानी भी मौजूद, न किसी दफ्तर के चक्कर, न किसी बाबू साहब की मेज़, न किसी फाइल की गर्द झाड़नी पड़ी, न किसी फाइल को पहिए लगाने की ज़रूरत पेश आई।
2: अरे वो मोहर भी नहीं।
0: मोहर भी नहीं। अलबत्ता इसके बाद एक और इंकशाफ हुआ। मैंने पाकिस्तान से लाया हुआ एक बर्की आला चलाना चाहा तो मालूम हुआ कि जापान की जो बिजली है वो भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है।
1: जी, बंदे भी मुख्तलिफ, बिजली भी मुख्तलिफ। वैसे शरीफ बिजली है यहाँ।
0: इनोसेंट बिजली। यहाँ बिजली 100 वोल्ट की है जबकि पाकिस्तान में लगभग 230 वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान से कोई बर्की सामान साथ ले आए तो पहले इसकी प्लेट जरूर देख लीजिए, वरना हो सकता है कि मशीन तो बच जाए लेकिन आपकी उम्मीदें जरूर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी।
2: मुस्कुरा कर।
0: फिर प्लग भी अलग। जापान में ए टाइप प्लग इस्तेमाल होते हैं जिनकी दो चिपटी पिने बिल्ली के आंखों की तरह लगती हैं। जबकि हमारे यहाँ ज्यादातर सी टाइप प्लग राइज हैं जिनमें दो गोल पिने होती हैं। अलबत्ता इस मुश्किल का भी जापानी अंदाज का एक सादा हल मौजूद है। एक यूनिवर्सल प्लग खरीद लीजिए, फिर ना जापानी प्लग को आपसे शिकायत रहेगी और ना पाकिस्तानी सामान को।
2: अरे वाह, यूनिवर्सल प्लग, जिंदाबाद। खलील साहब ने खदीजा क्या नक्शा खींच दिया। बिजली और पानी का कनेक्शन यहीं लगता है। सब
1: तालियां तालियां होनी चाहिए कि इनको मिल गया ये कनेक्शन। अच्छा जी, यूनिवर्सल प्लग वाली बात तो बड़ी अहम है। यहाँ जो सामान लाते हैं उसका मसला तो हो जाता है, लेकिन यहाँ जापान से जब कोई बर्की आला पाकिस्तान ले जाए तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही मसला दरपेश होता है। वजह वही कि जापान की बिजली पाकिस्तान से मुख्तलिफ। सीधी सादी जो हुई ना,
2: वॉशिंग मशीन लेके गई थी।
1: नहीं, दिमाग आ गया मेरा।
2: अच्छा खलील साहब, उम्मीद है जापान में कुछ ना कुछ नया देखते रहेंगे, हमें हमारे सामने को महसूस करते रहेंगे और हम मुंतजिर रहेंगे खलील साहब का प्रोग्राम जापान जो मैंने देखा। इसके नित नए मौजूद के हम मुंतजिर रहेंगे। तो सामने प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी, और अब वक्त हुआ है मौसीकी का, और आज सुनाए जाने वाले गीत का उन्वान है सेमी यानी झींगर। उसको पेश करने वाले हैं काजुयोशी साइतो।
2: साइतो साहब 22 जून 1966 को जापान के तोचिगी प्रीफेक्चर में पैदा हुए। 25 अगस्त 1993 को उन्होंने अपने सिंगल बुक नो मीता बीटल्स वा टीवी नो नाका, यानी वो बीटल्स जिन्हें मैंने टीवी पर देखा, के साथ अपना कैरियर का आगाज किया। और अगले साल उन्होंने अरुते कायरो यानी घर को चलो की रिलीज के साथ बड़ी वसी तवज्जो हासिल की। उनके मशहूर गाने जिनमें उता उताई नो बहलाद यानी गुलूकार का गीत और फिर शादी का गाना जुत्तो सुकी दत्ता यानी मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की और यसाशी को नारिताई मैं मेहरबान बनना चाहता हूँ, ये सब मदाहों और फनकारों दोनों में मकबूल क्लासिक बन चुके हैं।
0: एक गैर मामूली लाइव परफॉर्मर के तौर पर बड़े पैमाने पर तस्लीम शुदा साइतो ने सोलो परफॉर्मेंस से लेकर फुल बैंड कंसर्ट के साथ भी अपने फन का जादू जगाया। अपने रिकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस कैरियर के अलावा वो मुख्तलिफ फनकारों और मौसीकारों के साथ गाने लिखने, प्रोड्यूस करने और तावुन में भी सरगर्म हैं।
1: अच्छा, अपने डेब्यू की 30वीं सालगिरह मनाने के बाद काजुयोशी साइतो एक फाल और मुतनव्वो कैरियर जारी रखे हुए हैं। वो मुसलसल मौसीकी के नए अंदाज और तख्लीकी तावुन को दरियाफ्त कर रहे हैं।
0: उरता साहिबा के मुताबिक आज सुनवाया जाने वाला गीत सेमी यानी झींगर उदास गर्मियों का गाना है, जिसमें एक आदमी गर्म मरतूब दिन घूमता है और इसके साथ तन्हाई और कुछ खोने का बढ़ता हुआ एहसास उसे होता है। झींगर शदीद धूप और गायब होते हुए साए जिंदगी की नापायदारी और इस एहसास की अलामत है कि कोई अहम शख्स चला गया है।
2: इस गीत के बोलों में मरतूब मौसम और खिड़की से चिपके एक झींगर का जिक्र है जो चहचहा रहा है। तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूस लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जुमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जमा है, हर सू खामोशी, उस पर चट्टानों को छेदती झिंगर की आवाज़।
1: वाह, इन चंद अल्फाज ने ही समा बांध दिया।
0: अच्छा, इस अल्फाज से जो कानों को छेदती वाली बात है, उससे मुझे ख़ासतौर पे झिंगर की वो वाली किस्म याद आती है, सुकुसुकुबोशी, जो उसकी आवाज़ वाकई कानों को छेदती महसूस होती है, अपने परों को रगड़ के निकालता है ना वो आवाज़।
1: अच्छा,
0: तो ये था जापान की एक शायरी हाइकू जिसमें झिंगर का जिक्र है। हमारे पाको हिंद में भी तो झिंगर पर शायरी हुई है ना।
1: हाँ, अब खदीजा साहिबा से झिंगर पर नज्म सुनते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर, नज्म और वो भी झिंगर पर।
1: कोई भी सुनाइए।
2: जी जरूर, ख्वाजा हसन निजामी की नज्म झिंगर का जनाजा पेश है भाई, उसके चंद अशआर पेश है।
1: अच्छा।
2: न बिच्छू का सा जहरीला डंग था, न सांप का सा डसने वाला फन था, ना कौवे की सी शरीर चोंच, ना बुलबुल की मानिंद फूलों की इश्कबाजी, शाम के वक्त मुसलसल बीन बजाता था।
0: वाह वाह, ये नज़्म
1: जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये वो वाला झिंगर है जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं पाकिस्तान में। झिंगर जिंदाबाद। चलिए अब